तेरे घर के गेट पर, ठीक 11:15 तू होना जाइयो लेट पर, टाइम वेस्ट ना करियो मेरा बेबी, वो काम बहुत है एंट्री का कोई चक्कर।

0: तेरे घर के गेट पर ठीक 11:15 तू होना जाइयो लेट पर।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

घूर के देखे जो कोई तुझको कान पे उसके चार लगा दूं, जी भर के ना चले बेबी शैंपेन के शावर में, यार तेरे का फैन मिनिस्टर बैठा है जो

पसीना चकल है इंडियन बॉडी लटीना चकल चमेल कटक डरीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने ये तो किया बर्बाद है तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद ना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: तुझको बनाया, कैसे बताऊं तुझसे दूर कैसे रह रहा हूं, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि
1: तेरी मम्मी, तेरे पापा, तेरा भैया, तेरा चाचा, तेरा दादा, तेरी नानी, तेरी जमुना नगर वाली।

0: কোনো এস্তোপরে সা তুমি নাটা রোজরে জিও দুর্বিভার সহের বসে হবে না আজ তুমি সঙ্গে মহান যাচ্ছ কি বস কর কমপ্লেন করো না
1: कतै तपाईका बालबालिकामाथि पनि यस्तै प्रकारका दुर्व्यवहार भएको त छैनन्? गलत व्यवहार हुन्छ भने चुप लाग्नु समाधान होइन, दुर्व्यवहार सहेर बस्दा ठूला हिंसाका घटना निम्तिन सक्छन्। कोही विश्वासिलो व्यक्तिलाई आफूमाथि भएका कुनै पनि दुर्व्यवहार बारे खुलेर कुरा गरौं, ढिला नगरौं, आजैबाट शुरू गरौं।